0: 香港电台新闻报道。
1: 晚上八点，香港电台现在由高聚报道新闻。九龙城裁判法院对开下午有小巴怀疑失控铲上行人路，至少20人受伤，其中3人重伤，包括一名44岁男途人，他身体多处严重受伤，昏迷送往广华医院救治。有伤者表示，事发时小巴车速很快，司机扭方向盘后撞向法院外，事后情况混乱。有目击者表示，见到一名伤者被撞到后卷入车底倒卧车头位置。事发在下午近6点，多名伤者在意外后于法院外的楼梯接受初步治疗，有人手部受伤，在现场经包扎后由救护员搀扶上救护车，也有伤者要由担架送院。涉事小巴撞向法院楼梯后，车头严重损毁，附近有路牌被撞到飞脱。警方捣破利用海路走私毒品的贩毒集团，检获约241公斤怀疑可卡因，市值约1亿8000万元，是过去一年最大宗贩运可卡因案件。3人涉嫌贩运危险药物及串谋贩运危险药物被捕，部分人有渔民背景。警方经情报分析，锁定一艘停泊香港仔避风塘的游艇，怀疑是集团收集毒品的临时储存舱，并相信有骨干住在香莲船只负责监视。警方本月26号深夜突击搜查有关船只，检获大批怀疑砖状可卡因，拘捕2人，又搜查集团主脑的住所，检获与船只有关的文件和大量犯罪得益，估计价值超过200万元，将他拘捕。警方相信被捕人士与海外毒品供应商有联系，懂得利用渔民日常工作路线掩饰走私活动，估计有关毒品原本准备分拆给本地毒品市场。港铁透过内地合资企业参与营运深圳市轨道交通13号线第二期北延段，今天正式投入服务，与去年底通车的第一期顺利贯通。港铁表示，13号线是港铁在深圳参与营运的第二条地铁线，项目分2期展开，第一期由深圳湾口岸至上乌站，已于去年底通车，第二期包括北延段与南延段，今天通车的是北延段，由第一期的上乌站向北延伸至李松朗站，全长约19公里，共有11个车站。港铁说，通车后13号线由深圳湾口岸起向北连起了南山、宝安、光明3大行政区，进一步加强深圳市中西部交通联系，提升出行效率，助力区域协同发展。美军以伊朗攻击霍尔木兹海峡附近海域的商船为由，再次打击伊朗境内多个目标，包括军事监视设施、通信系统、防空阵地、无人机储存设施以及布雷装置等。美国总统特朗普在社交平台发文指责伊朗再次违反停火协议，警告总有一天美国或者无法再保持理智而被迫重启军事行动。 伊朗革命卫队就向美军位于科威特和巴林的设施发射导弹和无人机，强调霍尔木兹海峡的通行管控由伊方负责，今后会更强硬对待违规船只，并威胁对美军基地发动地狱式打击。科威特和巴林分别启动防空系统应对伊朗的袭击。科威特外交部以最强烈措辞谴责伊朗的侵略，公然侵犯科威特的主权。在天气方面，与低压槽相关的骤雨正影响广东沿岸及南海北部。本港地区今晚及明天的天气预测，大致多云，有几阵骤雨，明天初时骤雨较多，及局部地区有雷暴，最低气温约27度，日间短暂时间有阳光，最高气温约32度，吹轻微至和缓偏南风。展望随后两三天部分时间有阳光，天气渐转酷热，也有一两阵骤雨，本周后期天气渐转不稳定。现时路德室外气温27度，相对湿度94%。向电台新闻报道完毕。
0: 听 AM 621，
2: 听生活，听精彩。
0: 听香港电台普通话台
2: AM 621，香港电台普通话台，捕捉生活精彩。扶贫委员会已发表了香港精准扶贫成果报告，主要政策范畴为市民提供全面的保障，精准扶贫项目支援特定群体，我们会继续以人为本，政、商、民三方同行合作，精准扶助有特定需要的市民，聚力同行见成效，精准扶助创新城，马上到扶贫委员会专题网页了解更多吧。不同族裔的青年都勇敢追梦。
0: EM 青年当自强。
3: Me as a teacher, as a guidance, I see them and I see them a lot of improvement.
4: I pursue for my social work degree and also I have finished the counseling degree. I want.
5: 更多少数族裔青年追梦的故事，尽在 CIBS 节目 EM 青年当自强。
2: 立刻上港台网站收听节目直播或重温。
0: 香港电台 CIBS 人人广播，
6: 由而家到晚上11点是社区参与广播时段，节目由参与 CIBS 社区参与广播服务的社区团体或人士制作。
2: 从现在到晚上11点是社区参与广播时段，节目由参与 CIBS 社区参与广播服务的社区团体或人士制作。
7: From now to 11 p.m, you'll be listening to programs made by community producers from the CIBS Community Involvement Broadcasting Service.
8: 함부로 समाजको हर छोरीहरुमा समर्पित हङकङमा रहेका अल्पसंख्यक समुदायका छोरीहरुको अनेकौ आभासहरु समेटिएको एउटा मीठो रेडियो कार्यक्रम हाम्रा छोरीहरु Our Daughters 2.0, जहाँ हामी समेट्ने छौं वहाँहरुको फरक फरक पृष्ठभूमिमा बस्नु भएका अनुभवहरु, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पत्रकारिता, उद्यम, खेलकूद देखि आजको आधुनिक आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स सम्मको बृहत योगदान दिनुभएका प्रेरणादायी 13 कथाहरू सुन्नेछौ। रेडियो कार्यक्रम हाम्रा छोरीहरू Our Daughters 2.0, यस कार्यक्रमको उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहेका महिलाहरूको प्रेरणादायी कथा मार्फत समाजमा सकारात्मक सोच र समानताको सन्देश दिनु हो।
9: Dedicated to every daughter of our ethnically diverse community, a radio program celebrating the voices and journeys of daughters from Hong Kong's ethnically diverse community. Hamra Choriharu, Our Daughters 2.0. Hamra Choriharu, Our Daughters 2.0 aims to inspire positivity and promote equality in society by sharing the powerful stories of women who are shaping a better future for all.
8: श्रोता मित्रहरू नमस्कार। छोरीहरूको साहस, सपना र उपलब्धिहरूले समाजलाई समानता, सम्भावना र उज्यालोतर्फ डोराउँछ।